बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज़ पर सुनी जा सकती हैं। सामीन, आज के प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। होम पेज का एड्रेस है nhk.jp/urdu।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 17 अगस्त सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। टोक्यो के पूर्व में स्थित चिबा के अधिकारियों का कहना है कि प्रीफेक्चर में पिछले सप्ताह हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद एक और व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 10 हो गई है। चिबा शहर के अधिकारियों ने बताया कि लगभग 2,500 वाहनों में पानी भर जाने से वो सड़क पर खराब खड़े हैं और उन्हें हटाने का काम जारी है। बृहस्पतिवार शाम को प्रीफेक्चर में भारी बारिश के बादल बनने शुरू हुए, जिससे रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। चिबा शहर में मात्र 12 घंटों में अगस्त महीने के औसत से लगभग 3 गुना अधिक बारिश हुई। हाल ही में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है, जिसकी उम्र 30 वर्ष से अधिक थी। अधिकारियों का कहना है कि बिजली गुल होने के दौरान चिबा शहर में अपने घर पर जनरेटर का इस्तेमाल करने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता से उसकी मौत हो गई। प्रीफेक्चर अधिकारियों का कहना है कि 2 मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, 11 मकान 50% क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 29 इमारतों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। बाढ़ से लगभग 1500 घर प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि रविवार दोपहर 1:30 बजे तक नगरपालिकाओं द्वारा नामित आश्रय स्थलों में 101 लोग रह रहे थे। कोरियाई प्रायद्वीप पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के उद्देश्य से अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने सोमवार से अपना नियमित संयुक्त सैन्याभ्यास शुरू कर दिया। दक्षिण कोरिया में जारी उल्ची फ्रीडम शील्ड नामक यह अभ्यास 27 अगस्त तक चलेगा। उत्तर कोरिया द्वारा रूस में अपने सैनिक भेजे जाने के मद्देनजर इस अभ्यास में संभावित ड्रोन हमलों और साइबर हमलों से निपटने के तरीके भी शामिल होंगे। दक्षिण कोरिया की योनहाप समाचार एजेंसी का कहना है कि वर्ष 2025 के मुकाबले इस साल छोटे पैमाने पर अभ्यास किए जाएंगे। दक्षिण कोरियाई सेना का कहना है कि वो अपनी मुस्तैदी बनाए रखने और रक्षा क्षमता में सुधार करने के लिए पूरे वर्ष संतुलित तरीके से अभ्यास करती है, लेकिन पिछले साल जून में राष्ट्रपति ई जे म्यून के पदभार संभालने के बाद से सेना ने सैन्य अभ्यासों का पैमाना कम करना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि ई उत्तर कोरिया के साथ बातचीत के पक्ष में है। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को संयुक्त अभ्यास पर टिप्पणी करते हुए कहा कि प्योंगयांग आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करके किसी भी खतरे या चुनौती को मिटाने के अपने रुख को और अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि उन्होंने पेंटागन

को दक्षिण कोरिया के साथ नियोजित संयुक्त सैन्य अभ्यासों के पैमाने को कम करने का आदेश दिया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि वो इस बात से खुश नहीं थे कि अमेरिका ने बहुत पहले ही दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने पर सहमति जता दी थी। ट्रंप ने जोड़ा, ये अभ्यास काफी महंगे हैं जिनका अधिकांश खर्च हमेशा की तरह अमेरिका वहन करता है। इसके साथ ही ये उत्तर कोरिया को एक ऐसा संदेश भेजते हैं जो पूरी तरह से अनुचित और शत्रुतापूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि जब से वो राष्ट्रपति बने हैं, उत्तर कोरिया ने उनके प्रति कोई धमकी भरा रवैया नहीं अपनाया है और सम्मानजनक व्यवहार किया है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम के उद्देश्य से हुए समझौता ज्ञापन के तहत निर्धारित 60 दिनों की वार्ता अवधि समाप्त होने के बावजूद दोनों देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों ने जून में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि वार्ता की अवधि 18 जून को शुरू हुई थी, जिसका मतलब है कि वार्ता की समय सीमा रविवार को समाप्त हो गई। वार्ता के विषयों में अमेरिका की समुद्री नाकाबंदी समाप्त करना, होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज़ों की आवाजाही बहाल करना, ईरान का परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंध हटाने के मुद्दे शामिल थे। वार्ता अवधि के दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे पर जवाबी हमले जारी रखे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच ऐसा कोई संघर्ष विराम समझौता कभी हुआ ही नहीं था जिसकी अवधि बढ़ाने की आवश्यकता हो। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने, सैन्य कार्रवाइयों से हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने और अमेरिका की समुद्री नाकाबंदी हटाने जैसी 6 शर्तें रखी थीं। अमेरिका ने 7 जुलाई को घोषणा की थी कि उसने ईरानी तेल की बिक्री की अनुमति देने वाला लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसके बाद उसने 14 जुलाई को समुद्री नाकाबंदी बहाल कर दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 जुलाई को पत्रकारों से कहा था कि उन्हें लगता है कि संघर्ष विराम समाप्त हो गया है। इंडोनेशिया के अधिकारियों का कहना है कि शनिवार को देश के पूर्वी हिस्से में आए भूकंप में 53 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। फ्लोरेस द्वीप के पास आए 7.7 की तीव्रता के भूकंप से 200 से अधिक मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने रविवार को मृतकों की संख्या की घोषणा की। अधिकारी भूकंप के केंद्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में बचाव कार्य में तेजी ला रहे हैं, जहां सड़कें अवरुद्ध हैं। मकानों को नुकसान पहुंचने के बाद 5,000 से अधिक लोगों को पलायन करना पड़ा है। भोजन, पानी, कंबल और अन्य राहत सामग्री की व्यवस्था करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। इंडोनेशिया सरकार का कहना है कि उसने शनिवार रात तक कई क्षेत्रों में विमानों से 27 टन राहत सामग्री पहुंचाई। सरकार का यह भी कहना है कि उसने क्षेत्र में सेना के 3,500 से अधिक जवान और पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। जापान की एक लोकप्रिय साप्ताहिक मांगा पत्रिका की कागजी प्रतियों की बिक्री पहली बार 10 लाख प्रतियों से कम रही। एक समय था जब शुएशा की साप्ताहिक पत्रिका वीकली शोनेन जंप की 65 लाख प्रतियां बिकी थीं। जापान पत्रिका प्रकाशन संगठन के आंकड़ों से पता चलता है कि जून तक की तिमाही में इस पत्रिका की कागजी प्रतियों की औसत संख्या प्रति अंक 9,85,000 रही। घरेलू पत्रिकाओं में आंकड़ा अब भी सर्वाधिक है, लेकिन 2008 में संगठन द्वारा आंकड़े रखे जाने के बाद से वीकली शोनेन जंप की प्रकाशित प्रतियों की संख्या पहली बार 10 लाख से नीचे आई है। इसका मतलब है कि जापान में 10 लाख से अधिक प्रतियां बेचने वाली अब कोई भी कागजी पत्रिका नहीं है। 1968 में अपनी शुरुआत के बाद से एक के बाद एक लोकप्रिय मांगा सीरीज के साथ वीकली शोनेन जंप की मांग बढ़ती गई। 1994 में 65.3 लाख प्रतियों के साथ इसकी बिक्री चरम पर पहुंच गई थी, लेकिन अन्य पत्रिकाओं की तरह हालिया वर्षों में इसकी प्रतियों का वितरण कम हो गया है। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: NHK World जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 25वें पाठ में अपनी तबीयत के बारे में बताना सीखेंगे।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो बैठक में आराम कर रही है, लेकिन लगता है कुछ गड़बड़ है।
0: तो आइए सुनते हैं 25वें पाठ की बातचीत।
2: तामसान, काओइरो गा वारुई देसु यो। दोशितान देसु का?
3: नोदो गा इताई इन देसु।
2: ओया ओया, सोन्ना टोकी नी वा शोगा हाचिमित्सु यू गा इई देसु यो।
3: काइटो गा इमा त्सुकुत्ते इमासु।
4: तामसान, देकिता यो। हाई, दोज़ो।
3: ओ दाइजी नी।
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: हारूजी में लगे सेंसर ने भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है और उनके गालों पर हल्की नीली रोशनी टिमटिमाने लगी। तो हारूजी ने ताम से पूछा,
2: तामसान, काओइरो गा वारुई देसु यो।
1: ताम जी, चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है।
2: दोशितान देसु का?
1: क्या हुआ?
0: ताम ने खांसते हुए जवाब दिया,
3: नोदो गा इताई इन देसु,
1: गले में दर्द है।
0: तब हारूजी ने कहा,
2: ओया ओया।
1: ओ,
0: फिर हारूजी ने ताम को सलाह दी,
2: सोन्ना टोकी नी वा शोगा हाचिमित्सु यू गा इई देसु यो।
1: ऐसे समय में अदरक और शहद वाला गर्म पानी अच्छा रहता है।
0: उसके बाद मिया ने कहा,
3: काइटो गा इमा त्सुकुत्ते इमासु।
1: काइटो अभी बना रहा है।
0: फिर काइटो ताम के लिए अदरक और शहद वाला गर्म पानी लेकर आया।
4: तामसान, देखिता यो।
0: ताम बन गया।
4: हाई, दोज़ो।
0: ये लो।
1: उसके बाद मिया ने ताम से कहा,
3: ओदाइजी नी,
1: अपना ध्यान रखो।
0: अदरक और शहद वाला गर्म पानी बनाने के लिए कद्दूकस किए हुए अदरक को शहद के साथ गर्म पानी में मिलाया जाता है। ये माना जाता है कि इसे पीने से गले के दर्द और खांसी से राहत मिलती है। इसे पीकर ताम को अच्छा लगेगा।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
3: नोदो गा इताई इन देसु,
1: यानी गले में दर्द है। ये वाक्य सीखकर आप तबीयत खराब होने पर अपनी परेशानी बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: नोदो
0: का अर्थ है गला। उसके बाद लगा है गा, जो उस अंग के नाम के बाद लगाया जाता है जिसमें दर्द हो, और
5: इताई इन देसु
0: का मतलब होता है दर्द है।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि
5: इताई इन देसु
1: के अंत में लगे
5: देसु
1: का उपयोग अपनी बात समझाते समय किया जाता है। इसलिए किसी को अपनी तबीयत के बारे में बताते समय भी वाक्य के अंत में लगाते हैं
5: देसु। इताई देसु
0: में पहले आया है ई विशेषण,
5: इताई
0: यानी दर्द होना, और उसके बाद लगा है
5: देसु।
0: आज की बातचीत में ताम इस वाक्य की मदद से हारूजी को अपनी परेशानी समझा रही है।
1: तो आप भी सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: इताई इन देसु, नोदो गा इताई इन देसु।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें कोई अपनी तबीयत के बारे में बता रहा है।
3: दोशितान देसु का?
4: अतामा गा इताई इन देसु, नेत्सु गा आरु इन देसु।
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
0: पहले महिला ने कहा,
3: दोशितान देसु का?
1: क्या हुआ?
0: कोई परेशान दिख रहा हो तो उसकी समस्या पूछने के लिए इस वाक्य का उपयोग करते हैं। ये पूरा वाक्य एक साथ याद कर लीजिए।
1: जवाब में पुरुष ने कहा,
4: अतामा गा इताई इन देसु,
0: सिर में दर्द है।
5: अतामा
1: का मतलब है सिर, इसलिए
5: अतामा गा इताई
1: का मतलब हुआ सिर में दर्द है। पुरुष ने आगे कहा,
4: नेत्सु गा आरु इन देसु,
0: बुखार है।
5: नेत्सु
1: का अर्थ है बुखार, और
5: आरु
1: एक क्रिया है जिसका अर्थ है होना। तो
5: नेत्सु गा आरु
1: का मतलब है बुखार होना। इस वाक्य से आप समझ सकते हैं कि
5: देस
1: विशेषणों के ही नहीं क्रियाओं के बाद भी लग सकता है।
0: तो अब ये बातचीत सुन लीजिए और उत्तर दोहरा कर अभ्यास कीजिए।
5: どうしたんですか?頭が痛いんです。熱があるんです。
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपके पेट में दर्द है, तो ये बात जापानी भाषा में कैसे कहेंगे? पेट के लिए जापानी शब्द है
5: ओनाका,
1: और दर्द को जापानी भाषा में कहते हैं
5: इताई।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
2: ओनाका गा इताई देस। ओनाका गा इताई देस।
0: अब मान लीजिए कि बहुत देर तक किसी वाहन में बैठे बैठे आपको आपकी तबीयत खराब लग रही है। तबीयत खराब लगना को जापानी में कहते हैं
5: किमोची गा वारुई।
0: तो अपनी बात जापानी भाषा में समझाने की कोशिश कीजिए।
4: किमोची गा वारुई देस। किमोची गा वारुई देस।
1: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो मिया की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
3: ओदाइजिनी।
5: ओदाइजिनी
0: का अर्थ है अपना ध्यान रखो। अगर कोई बीमार हो या किसी को कोई चोट लगी हो तो आप फिक्र दिखाने के लिए इस वाक्य का उपयोग कर सकते हैं। इससे आप ये आशा व्यक्त कर सकते हैं कि वो व्यक्ति आराम करके जल्दी ठीक हो जाए।
1: अब इस वाक्य को विभिन्न लोगों की आवाजों में सुनते हैं।
6: お大事に。
7: お大事に。
8: お大事に。
0: और अब एक बार फिर से सुन लेते हैं आज की बातचीत。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
8: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: अब बारी है हमारे अंश हारू जी की सलाह की, जिसमें आज हम बता रहे हैं कि अगर आप जापान में बीमार हो जाएं तो क्या कर सकते हैं।
0: जापान में बीमार होने पर क्या करना चाहिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी के लक्षण क्या हैं।
1: अगर लक्षण गंभीर ना हो तो आप किसी भी दवा खाने या फार्मेसी से दवाई ले सकते हैं। वहां दुकानदार को अपनी परेशानी बताने पर वो आपको सही दवाई दे देगा। तो दवा खाने जाइए और दुकानदार से कहिए पेट में दर्द है या बुखार है। ऐसा करने पर आपको बिना पर्ची के दी जा सकने वाली दवा मिल जाएगी।
0: लेकिन अगर डॉक्टर के पास जाना हो तो आपको किसी चिकित्सालय या अस्पताल जाना होगा। विदेशी पर्यटकों को चिकित्सा देखभाल उपलब्ध करवाने वाले चिकित्सा संस्थानों की सूची जापान राष्ट्रीय पर्यटन संगठन यानी JNTO की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। वेबसाइट तक पहुंचने के लिए आप फॉर सेफ ट्रेवल्स इन

0: जापान JNTO शब्द से सर्च कर सकते हैं। इसे बुकमार्क कर लीजिएगा।
1: इसके अलावा पास के अस्पताल या चिकित्सालय का पता लगाने के लिए आप पर्यटन केंद्र या होटल के रिसेप्शन पर भी पूछ सकते हैं, और आपात स्थिति में फोन पर 119 दबाकर एम्बुलेंस बुला सकते हैं।
0: लेकिन हम ये कामना करते हैं कि जापान में यात्रा करते समय आपको कभी भी इन सुविधाओं की जरूरत ना पड़े।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम अपने दोस्तों के साथ साकुरा यानी चेरी के फूल देखने जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 17 अगस्त सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। टोक्यो के पूर्व में स्थित चिबा के अधिकारियों का कहना है कि प्रीफेक्चर में पिछले सप्ताह हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद एक और व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 10 हो गई है। चिबा शहर के अधिकारियों ने बताया कि लगभग 2,500 वाहनों में पानी भर जाने से वो सड़क पर खराब खड़े हैं और उन्हें हटाने का काम जारी है। बृहस्पतिवार शाम को प्रीफेक्चर में भारी बारिश के बादल बनने शुरू हुए, जिससे रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। चिबा शहर में मात्र 12 घंटों में अगस्त महीने के औसत से लगभग 3 गुना अधिक बारिश हुई। हाल ही में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है, जिसकी उम्र 30 वर्ष से अधिक थी। अधिकारियों का कहना है कि बिजली गुल होने के दौरान चिबा शहर में अपने घर पर जनरेटर का इस्तेमाल करने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता से उसकी मौत हो गई। प्रीफेक्चर अधिकारियों का कहना है कि 2 मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, 11 मकान 50% क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 29 इमारतों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। बाढ़ से लगभग 1500 घर प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि रविवार दोपहर 1:30 बजे तक नगरपालिकाओं द्वारा नामित आश्रय स्थलों में 101 लोग रह रहे थे। कोरियाई प्रायद्वीप पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के उद्देश्य से अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने सोमवार से अपना नियमित संयुक्त सैन्याभ्यास शुरू कर दिया। दक्षिण कोरिया में जारी उल्ची फ्रीडम शील्ड नामक यह अभ्यास 27 अगस्त तक चलेगा। उत्तर कोरिया द्वारा रूस में अपने सैनिक भेजे जाने के मद्देनजर इस अभ्यास में संभावित ड्रोन हमलों और साइबर हमलों से निपटने के तरीके भी शामिल होंगे। दक्षिण कोरिया की योनहाप समाचार एजेंसी का कहना है कि वर्ष 2025 के मुकाबले इस साल छोटे पैमाने पर अभ्यास किए जाएंगे। दक्षिण कोरियाई सेना का कहना है कि वो अपनी मुस्तैदी बनाए रखने और रक्षा क्षमता में सुधार करने के लिए पूरे वर्ष संतुलित तरीके से अभ्यास करती है, लेकिन पिछले साल जून में राष्ट्रपति ई जे म्यून के पदभार संभालने के बाद से सेना ने सैन्य अभ्यासों का पैमाना कम करना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि ई उत्तर कोरिया के साथ बातचीत के पक्ष में है। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को संयुक्त अभ्यास पर टिप्पणी करते हुए कहा कि प्योंगयांग आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करके किसी भी खतरे या चुनौती को मिटाने के अपने रुख को और अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि उन्होंने पेंटागन को दक्षिण कोरिया के साथ नियोजित संयुक्त सैन्य अभ्यासों के पैमाने को कम करने का आदेश दिया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि वो इस बात से खुश नहीं थे कि अमरीका ने बहुत पहले ही दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने पर सहमति जता दी थी। ट्रंप ने जोड़ा, ये अभ्यास काफी महंगे हैं, जिनका अधिकांश खर्च हमेशा की तरह अमेरिका वहन करता है। इसके साथ ही ये उत्तर कोरिया को एक ऐसा संदेश भेजते हैं जो पूरी तरह से अनुचित और शत्रुतापूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि जब से वो राष्ट्रपति बने हैं, उत्तर कोरिया ने उनके प्रति कोई धमकी भरा रवैया नहीं अपनाया है और सम्मानजनक व्यवहार किया है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम के उद्देश्य से हुए समझौता ज्ञापन के तहत निर्धारित 60 दिनों की वार्ता अवधि समाप्त होने के बावजूद दोनों देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों ने जून में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि वार्ता की अवधि 18 जून को शुरू हुई थी, जिसका मतलब है कि वार्ता की समय सीमा रविवार को समाप्त हो गई। वार्ता के विषयों में अमेरिका की समुद्री नाकाबंदी समाप्त करना, होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज़ों की आवाजाही बहाल करना, ईरान का परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंध हटाने के मुद्दे शामिल थे। वार्ता अवधि के दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे पर जवाबी हमले जारी रखे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच ऐसा कोई संघर्ष विराम समझौता कभी हुआ ही नहीं था जिसकी अवधि बढ़ाने की आवश्यकता हो। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने, सैन्य कार्रवाइयों से हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने और अमेरिका की समुद्री नाकाबंदी हटाने जैसी 6 शर्तें रखी थीं। अमेरिका ने 7 जुलाई को घोषणा की थी कि उसने ईरानी तेल की बिक्री की अनुमति देने वाला लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसके बाद उसने 14 जुलाई को समुद्री नाकाबंदी बहाल कर दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 जुलाई को पत्रकारों से कहा था कि उन्हें लगता है कि संघर्ष विराम समाप्त हो गया है। इंडोनेशिया के अधिकारियों का कहना है कि शनिवार को देश के पूर्वी हिस्से में आए भूकंप में 53 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। फ्लोरेस द्वीप के पास आए 7.7 की तीव्रता के भूकंप से 200 से अधिक मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने रविवार को मृतकों की संख्या की घोषणा की। अधिकारी भूकंप के केंद्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में बचाव कार्य में तेजी ला रहे हैं, जहां सड़कें अवरुद्ध हैं। मकानों को नुकसान पहुंचने के बाद 5,000 से अधिक लोगों को पलायन करना पड़ा है। भोजन, पानी, कंबल और अन्य राहत सामग्री की व्यवस्था करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। इंडोनेशिया सरकार का कहना है कि उसने शनिवार रात तक कई क्षेत्रों में विमानों से 27 टन राहत सामग्री पहुंचाई। सरकार का यह भी कहना है कि उसने क्षेत्र में सेना के 3,500 से अधिक जवान और पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। जापान की एक लोकप्रिय साप्ताहिक मांगा पत्रिका की कागजी प्रतियों की बिक्री पहली बार 10 लाख प्रतियों से कम रही। एक समय था जब शुएशा की साप्ताहिक पत्रिका वीकली शोनेन जंप की 65 लाख प्रतियां बिकी थीं। जापान पत्रिका प्रकाशन संगठन के आंकड़ों से पता चलता है कि जून तक की तिमाही में इस पत्रिका की कागजी प्रतियों की औसत संख्या प्रति अंक 9,85,000 रही। घरेलू पत्रिकाओं में आंकड़ा अब भी सर्वाधिक है, लेकिन 2008 में संगठन द्वारा आंकड़े रखे जाने के बाद से वीकली शोनेन जंप की प्रकाशित प्रतियों की संख्या पहली बार 10 लाख से नीचे आई है। इसका मतलब है कि जापान में 10 लाख से अधिक प्रतियां बेचने वाली अब कोई भी कागजी पत्रिका नहीं है। 1968 में अपनी शुरुआत के बाद से एक के बाद एक लोकप्रिय मांगा सीरीज के साथ वीकली शोनेन जंप की मांग बढ़ती गई। 1994 में 65.3 लाख प्रतियों के साथ इसकी बिक्री चरम पर पहुंच गई थी, लेकिन अन्य पत्रिकाओं की तरह हालिया वर्षों में इसकी प्रतियों का वितरण कम हो गया है। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 25वें पाठ में अपनी तबीयत के बारे में बताना सीखेंगे।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो बैठक में आराम कर रही है, लेकिन लगता है कुछ गड़बड़ है।
0: तो आइए सुनते हैं 25वें पाठ की बातचीत।
2: तामेसान, काओइरो गा वारुई देसु यो। दोशितान देसु का?
3: नोदो गा इताई इन देसु।
2: ओया ओया, सोन्ना तोकी निवा शोगा हाचिमित्सु यू गा इई देसु यो।
3: काइतो गा इमा त्सुकुत्ते इमासु।
4: तामेसान, देकिता यो। हाई, दोज़ो।
3: ओ दाइजी नी।
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: हारूजी में लगे सेंसर ने भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है और उनके गालों पर हल्की नीली रोशनी टिमटिमाने लगी। तो हारूजी ने ताम से पूछा,
2: तामेसान, काओइरो गा वारुई देसु यो।
1: ताम जी, चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है।
2: दोशितान देसु का?
1: क्या हुआ?
0: ताम ने खांसते हुए जवाब दिया,
3: नोदो गा इताई इन देसु,
1: गले में दर्द है।
0: तब हारूजी ने कहा,
2: ओया ओया।
1: ओ,
0: फिर हारूजी ने ताम को सलाह दी,
2: सोन्ना तोकी निवा शोगा हाचिमित्सु यू गा इई देसु यो।
1: ऐसे समय में अदरक और शहद वाला गर्म पानी अच्छा रहता है।
0: उसके बाद मिया ने कहा,
3: काइतो गा इमा त्सुकुत्ते इमासु।
1: काइतो अभी बना रहा है।
0: फिर काइतो ताम के लिए अदरक और शहद वाला गर्म पानी लेकर आया।
4: तामसान, देखता यो।
0: ताम बन गया।
4: हाई, दोज़ो।
0: ये लो।
1: उसके बाद मिया ने ताम से कहा,
3: ओ दाइजी नी,
1: अपना ध्यान रखो।
0: अदरक और शहद वाला गर्म पानी बनाने के लिए कद्दूकस किए हुए अदरक को शहद के साथ गर्म पानी में मिलाया जाता है। ये माना जाता है कि इसे पीने से गले के दर्द और खांसी से राहत मिलती है। इसे पीकर ताम को अच्छा लगेगा।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
3: नोदो गा इताई इन देसु,
1: यानी गले में दर्द है। ये वाक्य सीखकर आप तबीयत खराब होने पर अपनी परेशानी बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
5: नोदो
0: का अर्थ है गला। उसके बाद लगा है गा, जो उस अंग के नाम के बाद लगाया जाता है जिसमें दर्द हो, और
5: इताई इन देसु
0: का मतलब होता है दर्द है।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि
5: इताइन देसु
1: के अंत में लगे
5: देसु
1: का उपयोग अपनी बात समझाते समय किया जाता है। इसलिए किसी को अपनी तबीयत के बारे में बताते समय भी वाक्य के अंत में लगाते हैं
5: देसु। इताइन देसु
0: में पहले आया है ई विशेषण,
5: इताई
0: यानी दर्द होना, और उसके बाद लगा है
5: देसु।
0: आज की बातचीत में ताम इस वाक्य की मदद से हारूजी को अपनी परेशानी समझा रही है।
1: तो आप भी सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: इताई इन देसु, नोदो गा इताई इन देसु।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें कोई अपनी तबीयत के बारे में बता रहा है।
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
0: पहले महिला ने कहा,
3: दोशितान देसु का?
1: क्या हुआ?
0: कोई परेशान दिख रहा हो तो उसकी समस्या पूछने के लिए इस वाक्य का उपयोग करते हैं। ये पूरा वाक्य एक साथ याद कर लीजिए।
1: जवाब में पुरुष ने कहा,
4: अतामा का इताइन देसु,
0: सिर में दर्द है।
5: अतामा
1: का मतलब है सिर, इसलिए
5: अतामा का इताई
1: का मतलब हुआ सिर में दर्द है।

0: पुरुष ने आगे कहा,
1: नेत्स गा आरुन देस,
2: बुखार है।
3: नेत्स
0: का अर्थ है बुखार और
3: आरु
0: एक क्रिया है जिसका अर्थ है होना, तो
3: नेत्स गा आरु
0: का मतलब है बुखार होना। इस वाक्य से आप समझ सकते हैं कि
3: देस
0: विशेषणों के ही नहीं क्रियाओं के बाद भी लग सकता है।
2: तो अब ये बातचीत सुन लीजिए और उत्तर दोहरा कर अभ्यास कीजिए।
3: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपके पेट में दर्द है, तो ये बात जापानी भाषा में कैसे कहेंगे? पेट के लिए जापानी शब्द है
3: ओनाका,
0: और दर्द को जापानी भाषा में कहते हैं
3: इताई।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
4: ओनाका गा इताई देस, ओनाका गा इताई देस।
2: अब मान लीजिए कि बहुत देर तक किसी वाहन में बैठे बैठे आपको आपकी तबीयत खराब लग रही है। तबीयत खराब लगना को जापानी में कहते हैं
3: किमोची गा वारुई।
2: तो अपनी बात जापानी भाषा में समझाने की कोशिश कीजिए।
1: किमोची गा वारुई देस, किमोची गा वारुई देस।
0: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो मिया की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
3: ओदाइजिनी, ओदाइजिनी
2: का अर्थ है अपना ध्यान रखो। अगर कोई बीमार हो या किसी को कोई चोट लगी हो तो आप फिक्र दिखाने के लिए इस वाक्य का उपयोग कर सकते हैं। इससे आप ये आशा व्यक्त कर सकते हैं कि वो व्यक्ति आराम करके जल्दी ठीक हो जाए।
0: अब इस वाक्य को विभिन्न लोगों की आवाजों में सुनते हैं।
5: お大事に。お大事に。お大事に।
2: और अब एक बार फिर से सुन लेते हैं आज की बातचीत।
6: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
7: 喉が痛いんです。
6: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
7: カイトが今作っています。
5: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
7: お大事に。
0: अब बारी है हमारे अंश हारू जी की सलाह की, जिसमें आज हम बता रहे हैं कि अगर आप जापान में बीमार हो जाएं तो क्या कर सकते हैं।
2: जापान में बीमार होने पर क्या करना चाहिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी के लक्षण क्या हैं।
0: अगर लक्षण गंभीर ना हो तो आप किसी भी दवा खाने या फार्मेसी से दवाई ले सकते हैं। वहाँ दुकानदार को अपनी परेशानी बताने पर वो आपको सही दवाई दे देगा। तो दवा खाने जाइए और दुकानदार से कहिए पेट में दर्द है या बुखार है। ऐसा करने पर आपको बिना पर्ची के दी जा सकने वाली दवा मिल जाएगी।
2: लेकिन अगर डॉक्टर के पास जाना हो तो आपको किसी चिकित्सालय या अस्पताल जाना होगा। विदेशी पर्यटकों को चिकित्सा देखभाल उपलब्ध करवाने वाले चिकित्सा संस्थानों की सूची जापान राष्ट्रीय पर्यटन संगठन यानी JNTO की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। वेबसाइट तक पहुंचने के लिए आप फॉर सेफ ट्रेवल्स इन जापान JNTO शब्द से सर्च कर सकते हैं। इसे बुकमार्क कर लीजिएगा।
0: इसके अलावा पास के अस्पताल या चिकित्सालय का पता लगाने के लिए आप पर्यटन केंद्र या होटल के रिसेप्शन पर भी पूछ सकते हैं, और आपात स्थिति में फोन पर 119 दबाकर एम्बुलेंस बुला सकते हैं।
2: लेकिन हम ये कामना करते हैं कि जापान में यात्रा करते समय आपको कभी भी इन सुविधाओं की जरूरत ना पड़े।
0: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
2: अगले पाठ में ताम अपने दोस्तों के साथ साकुरा यानी चेरी के फूल देखने जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये खबरें एनएच के वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। अमरीका और ईरान मफाहमत की याददाश्त के जरिए तय की गई 60 दिन की बातचीत की मुद्दत खत्म होने के बाद भी लड़ाई खत्म करने के मकसद से बहुत दूर हैं। दोनों ममालिक ने जून में मस्कूरा याददाश्त पर दस्तखत किए थे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि ये मुद्दत 18 जून को शुरू हुई, जिसका मतलब ये है कि बातचीत की मुद्दत इतवार को खत्म हो गई। बातचीत के मौजूदात में अमरीका की जानिब से समंदरी नाकाबंदी का खात्मा, आबनाए हरमूज में बहरी जहाजों की आमदोरफ्त बहाल करना, ईरान का जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों का खात्मा शामिल था। दोनों ममालिक ने मुजाकरात के टाइम फ्रेम के दौरान एक दूसरे पर हमले जारी रखे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराकची ने कहा कि दोनों फरीकों के दरमियान कभी जंगबंदी नहीं हुई जिसमें तौसी की जरूरत हो। तेहरान ने आबनाए हुरमोस को दोबारा खोलने के लिए 6 शराइत पेश की हैं, जिनमें ईरान पर पाबंदियां खत्म करना, फौजी कार्रवाई

0: से होने वाले नुकसान का मुआवजा और अमरीकी समंदरी नाकाबंदी का खात्मा शामिल है। अमरीका ने 7 जुलाई को ऐलान किया था कि उसने ईरानी तेल की फरोख्त की इजाजत देने वाला लाइसेंस मंसूख कर दिया है और 14 जुलाई को समंदरी नाकाबंदी दोबारा शुरू कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 8 जुलाई को सहाफियों को बताया था कि उनके ख्याल में जंगबंदी खत्म हो गई है। इंडोनेशिया के हुकाम का कहना है कि मुल्क के मशरकी हिस्से में हफ्ते के रोज आने वाले जलजले के नतीजे में 53 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई। फ्लोरेस जजीरे पर मैग्नीट्यूड 7 अशारिया के जलजले से 200 से जायद मकानात को भी नुकसान पहुंचा था। डिजास्टर मैनेजमेंट के एहलकारों ने हलाक होने वालों की तादाद का ऐलान इतवार के रोज किया। हुकाम जलजले के मरकज के करीबी इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों को तेज कर रहे हैं, जहां सड़कें मुनकता हो गई हैं। मकानात को नुकसान पहुंचने के बाद 5,000 से जायद अफराद को नकल मकानी करना पड़ी। खुराक, पानी, कंबल और दीगर इमदादी सामान की फराहमी इंतहाई अहम हो गई है। इंडोनेशिया की हकूमत का कहना है कि उसने हफ्ते की रात तक मुतअद्दिद इलाकों में 27 टन सामान पहुंचाने के लिए तैयारे भेजे हैं। हुकूमत का मजीद कहना है कि उसने 3,500 से जायद फौजी एहलकार और पुलिस अफसरान को खित्ते में भेज दिया है। एक मकबूल जापानी हफ्त रोजा मांगा मैगजीन की सर्कुलेशन पहली बार 10 लाख से नीचे आ गई है। शुए शाह के हफ्त रोजा चोनैन जम की सर्कुलेशन कभी 65 लाख तक पहुंची थी। जापान मैगजीन पब्लिशर्स एसोसिएशन के जारी करदा आदाद शुमार से जाहिर होता है कि जून तक की 3 माह की मुद्दत में इस जरीदे की औसत प्रिंट सर्कुलेशन 9,85,000 कापियां फी शुमारा रही। ये आदाद शुमार अब भी मकामी जराइद में सबसे बुलंद है, लेकिन 2008 में एसोसिएशन के आदाद शुमार जमा करना शुरू करने के बाद ये पहला मौका है कि हफ्त रोजा शोनेन जंप की अशाद 10 लाख से नीचे चली गई। इसका मतलब है कि जापान में अब कोई तबाती जरीदा ऐसा नहीं है जिसकी सर्कुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो। 1968 में अपने आगाज के बाद से मकबूल मांगा सीरीज हफ्त रोजा शोनेन जंप की मांग में मुसलसल इजाफा हुआ था। इसका अरूज 1994 में 65,30,000 कापियां था, लेकिन दीगर जराइद की तरह हालिया बरसों में इसकी प्रिंट सर्कुलेशन में भी कमी आई है।
1: और सामईन, आखिर में आज की अहम खबरों का खुलासा। टोक्यो के मशिक में वाक चीबा प्रीफेक्चर में हुकाम ने कहा है कि रिकॉर्ड शदीद बारिशों के बाद एक और शख्स की हलाकत की तस्दीक हुई है, जिसके बाद हलाक होने वालों की तादाद अब 10 हो गई है। अमरीका और जनूबी कोरिया ने पीर के रोज अपनी बाकायदा मुश्तरका फौजी मशकों का आगाज कर दिया है, जिसका मकसद जजीरा नुमा कोरिया में किसी हंगामी सूरतेहाल के लिए तैयारी करना है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुईं।

ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 17 अगस्त सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। टोक्यो के पूर्व में स्थित चिबा के अधिकारियों का कहना है कि प्रीफेक्चर में पिछले सप्ताह हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद एक और व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 10 हो गई है। चिबा शहर के अधिकारियों ने बताया कि लगभग 2,500 वाहनों में पानी भर जाने से वो सड़क पर खराब खड़े हैं और उन्हें हटाने का काम जारी है। बृहस्पतिवार शाम को प्रीफेक्चर में भारी बारिश के बादल बनने शुरू हुए, जिससे रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। चिबा शहर में मात्र 12 घंटों में अगस्त महीने के औसत से लगभग 3 गुना अधिक बारिश हुई। हाल ही में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है, जिसकी उम्र 30 वर्ष से अधिक थी। अधिकारियों का कहना

है कि बिजली गुल होने के दौरान चिबा शहर में अपने घर पर जनरेटर का इस्तेमाल करने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता से उसकी मौत हो गई। प्रिफेक्चर अधिकारियों का कहना है कि दो मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, 11 मकान 50% क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 29 इमारतों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। बाढ़ से लगभग 1500 घर प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि रविवार दोपहर 1:30 बजे तक नगर पालिकाओं द्वारा नामित आश्रय स्थलों में 101 लोग रह रहे थे। कोरियाई प्रायद्वीप पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के उद्देश्य से अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने सोमवार से अपना नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। दक्षिण कोरिया में जारी उल्ची फ्रीडम शील्ड नामक यह अभ्यास 27 अगस्त तक चलेगा। उत्तर कोरिया द्वारा रूस में अपने सैनिक भेजे जाने के मद्देनजर इस अभ्यास में संभावित ड्रोन हमलों और साइबर हमलों से निपटने के तरीके भी शामिल होंगे। दक्षिण कोरिया की योनहाप समाचार एजेंसी का कहना है कि वर्ष 2025 के मुकाबले इस साल छोटे पैमाने पर अभ्यास किए जाएंगे। दक्षिण कोरियाई सेना का कहना है कि वो अपनी मुस्तैदी बनाए रखने और रक्षा क्षमता में सुधार करने के लिए पूरे वर्ष संतुलित तरीके से अभ्यास करती है, लेकिन पिछले साल जून में राष्ट्रपति ई जे म्यून के पदभार संभालने के बाद से सेना ने सैन्य अभ्यासों का पैमाना कम करना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि ई उत्तर कोरिया के साथ बातचीत के पक्ष में है। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को संयुक्त अभ्यास पर टिप्पणी करते हुए कहा कि प्योंगयांग आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करके किसी भी खतरे या चुनौती को मिटाने के अपने रुख को और अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि उन्होंने पेंटागन को दक्षिण कोरिया के साथ नियोजित संयुक्त सैन्य अभ्यासों के पैमाने को कम करने का आदेश दिया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि वो इस बात से खुश नहीं थे कि अमेरिका ने बहुत पहले ही दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने पर सहमति जता दी थी। ट्रंप ने जोड़ा, ये अभ्यास काफी महंगे हैं जिनका अधिकांश खर्च हमेशा की तरह अमेरिका वहन करता है। इसके साथ ही ये उत्तर कोरिया को एक ऐसा संदेश भेजते हैं जो पूरी तरह से अनुचित और शत्रुतापूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि जब से वो राष्ट्रपति बने हैं, उत्तर कोरिया ने उनके प्रति कोई धमकी भरा रवैया नहीं अपनाया है और सम्मानजनक व्यवहार किया है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम के उद्देश्य से हुए समझौता ज्ञापन के तहत निर्धारित 60 दिनों की वार्ता अवधि समाप्त होने के बावजूद दोनों देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों ने जून में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि वार्ता की अवधि 18 जून को शुरू हुई थी, जिसका मतलब है कि वार्ता की समय सीमा रविवार को समाप्त हो गई। वार्ता के विषयों में अमेरिका की समुद्री नाकाबंदी समाप्त करना, होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज़ों की आवाजाही बहाल करना, ईरान का परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंध हटाने के मुद्दे शामिल थे। वार्ता अवधि के दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे पर जवाबी हमले जारी रखे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच ऐसा कोई संघर्ष विराम समझौता कभी हुआ ही नहीं था जिसकी अवधि बढ़ाने की आवश्यकता हो। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने, सैन्य कार्रवाइयों से हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने और अमेरिका की समुद्री नाकाबंदी हटाने जैसी 6 शर्तें रखी थीं। अमेरिका ने 7 जुलाई को घोषणा की थी कि उसने ईरानी तेल की बिक्री की अनुमति देने वाला लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसके बाद उसने 14 जुलाई को समुद्री नाकाबंदी बहाल कर दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 जुलाई को पत्रकारों से कहा था कि उन्हें लगता है कि संघर्ष विराम समाप्त हो गया है। इंडोनेशिया के अधिकारियों का कहना है कि शनिवार को देश के पूर्वी हिस्से में आए भूकंप में 53 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। फ्लोरेस द्वीप के पास आए 7.7 की तीव्रता के भूकंप से 200 से अधिक मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने रविवार को मृतकों की संख्या की घोषणा की। अधिकारी भूकंप के केंद्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में बचाव कार्य में तेजी ला रहे हैं, जहां सड़कें अवरुद्ध हैं। मकानों को नुकसान पहुंचने के बाद 5,000 से अधिक लोगों को पलायन करना पड़ा है। भोजन, पानी, कंबल और अन्य राहत सामग्री की व्यवस्था करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। इंडोनेशिया सरकार का कहना है कि उसने शनिवार रात तक कई क्षेत्रों में विमानों से 27 टन राहत सामग्री पहुंचाई। सरकार का यह भी कहना है कि उसने क्षेत्र में सेना के 3,500 से अधिक जवान और पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। जापान की एक लोकप्रिय साप्ताहिक मांगा पत्रिका की कागजी प्रतियों की बिक्री पहली बार 10 लाख प्रतियों से कम रही। एक समय था जब शुएशा की साप्ताहिक पत्रिका वीकली शोनेन जंप की 65 लाख प्रतियां बिकी थीं। जापान पत्रिका प्रकाशन संगठन के आंकड़ों से पता चलता है कि जून तक की तिमाही में इस पत्रिका की कागजी प्रतियों की औसत संख्या प्रति अंक 9,85,000 रही। घरेलू पत्रिकाओं में आंकड़ा अब भी सर्वाधिक है, लेकिन 2008 में संगठन द्वारा आंकड़े रखे जाने के बाद से वीकली शोनेन जंप की प्रकाशित प्रतियों की संख्या पहली बार 10 लाख से नीचे आई है। इसका मतलब है कि जापान में 10 लाख से अधिक प्रतियां बेचने वाली अब कोई भी कागजी पत्रिका नहीं है। 1968 में अपनी शुरुआत के बाद से एक के बाद एक लोकप्रिय मांगा सीरीज के साथ वीकली शोनेन जंप की मांग बढ़ती गई। 1994 में 65.3 लाख प्रतियों के साथ इसकी बिक्री चरम पर पहुंच गई थी, लेकिन अन्य पत्रिकाओं की तरह हालिया वर्षों में इसकी प्रतियों का वितरण कम हो गया है। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 25वें पाठ में अपनी तबीयत के बारे में बताना सीखेंगे।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो बैठक में आराम कर रही है, लेकिन लगता है कुछ गड़बड़ है।
0: तो आइए सुनते हैं 25वें पाठ की बातचीत।
2: तामेसान, काओइरो गा वारुई देसु यो। दोशितान देसु का?
3: नोदो गा इताई देसु।
2: ओया ओया, सोन्ना तोकी नी वा शोगा हाचिमित्सु यू गा ई देसु यो।
3: काइटो गा इमा त्सुकुत्ते इमासु।
4: तामेसान, देकिता यो। हाई, दोज़ो।
3: ओ दाइजी नी।
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: हारूजी में लगे सेंसर ने भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है और उनके गालों पर हल्की नीली रोशनी टिमटिमाने लगी। तो हारूजी ने ताम से पूछा,
2: तामेसान, काओइरो गा वारुई देसु यो।
1: ताम जी, चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है।
2: दोशितान देसु का?
1: क्या हुआ?
0: ताम ने खांसते हुए जवाब दिया,
3: नोदो गा इताई देसु,
1: गले में दर्द है।
0: तब हारूजी ने कहा,
2: ओया ओया।
1: ओ,
0: फिर हारूजी ने ताम को सलाह दी,
2: सोन्ना तोकी नी वा शोगा हाचिमित्सु यू गा ई देसु यो।
1: ऐसे समय में अदरक और शहद वाला गर्म पानी अच्छा रहता है।
0: उसके बाद मिया ने कहा,
3: काइतो गा इमा त्सुकुत्ते इमासु।
1: काइतो अभी बना रहा है।
0: फिर काइतो ताम के लिए

0: अदरक और शहद वाला गर्म पानी लेकर आया।
1: ताम-सान, देखता यो।
0: ताम, बन गया।
1: हाय, दोज़ो।
0: ये लो।
2: उसके बाद मिया ने ताम से कहा,
3: ओदाइजिनी,
2: अपना ध्यान रखो।
0: अदरक और शहद वाला गर्म पानी बनाने के लिए कद्दूकस किए हुए अदरक को शहद के साथ गर्म पानी में मिलाया जाता है। ये माना जाता है कि इसे पीने से गले के दर्द और खांसी से राहत मिलती है। इसे पीकर ताम को अच्छा लगेगा।
2: आज का मुख्य वाक्य है
3: नोदो गा इताई देस,
2: यानी गले में दर्द है। ये वाक्य सीखकर आप तबीयत खराब होने पर अपनी परेशानी बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
4: नोदो
0: का अर्थ है गला। उसके बाद लगा है गा, जो उस अंग के नाम के बाद लगाया जाता है जिसमें दर्द हो, और
4: इताई देस
0: का मतलब होता है दर्द है।
2: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि
4: इताई देस
2: के अंत में लगे
4: देस
2: का उपयोग अपनी बात समझाते समय किया जाता है। इसलिए किसी को अपनी तबीयत के बारे में बताते समय भी वाक्य के अंत में लगाते हैं
4: देस। इताई देस
0: में पहले आया है ई विशेषण
4: इताई,
0: यानी दर्द होना, और उसके बाद लगा है
4: देस।
0: आज की बातचीत में ताम इस वाक्य की मदद से हारूजी को अपनी परेशानी समझा रही है।
2: तो आप भी सुनिए और साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
4: इताई देस, नोदो गा इताई देस।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें कोई अपनी तबीयत के बारे में बता रहा है।
5: どうしたん ですか?
6: 頭が痛いんです。熱があるんです。
2: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
0: पहले महिला ने कहा
5: どうしたん ですか?
2: क्या हुआ?
0: कोई परेशान दिख रहा हो तो उसकी समस्या पूछने के लिए इस वाक्य का उपयोग करते हैं। ये पूरा वाक्य एक साथ याद कर लीजिए।
2: जवाब में पुरुष ने कहा
6: अतामा का इताइन देस,
0: सिर में दर्द है।
4: अतामा
2: का मतलब है सिर, इसलिए
4: अतामा का इताई
2: का मतलब हुआ सिर में दर्द है। पुरुष ने आगे कहा
6: नेत्स गा अरुन देस,
0: बुखार है।
4: नेत्स
2: का अर्थ है बुखार, और
4: आरु
2: एक क्रिया है जिसका अर्थ है होना। तो
4: नेत्स गा आरु
2: का मतलब है बुखार होना। इस वाक्य से आप समझ सकते हैं कि
4: देस
2: विशेषणों के ही नहीं क्रियाओं के बाद भी लग सकता है।
0: तो अब ये बातचीत सुन लीजिए और उत्तर दोहरा कर अभ्यास कीजिए।
4: どうしたん ですか? 頭が痛いんです。熱があるんです。
2: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपके पेट में दर्द है, तो ये बात जापानी भाषा में कैसे कहेंगे? पेट के लिए जापानी शब्द है
4: ओनाका,
2: और दर्द को जापानी भाषा में कहते हैं
4: इताई।
2: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
5: ओनाका गा इताई देस, ओनाका गा इताई देस।
0: अब मान लीजिए कि बहुत देर तक किसी वाहन में बैठे बैठे आपको आपकी तबीयत खराब लग रही है। तबीयत खराब लगना को जापानी में कहते हैं
4: किमोची गा वारुई।
0: तो अपनी बात जापानी भाषा में समझाने की कोशिश कीजिए।
6: किमोची गा वारुई देस, किमोची गा वारुई देस।
2: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो मिया की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
3: ओदाइजिनी,
4: ओदाइजिनी
0: का अर्थ है अपना ध्यान रखो। अगर कोई बीमार हो या किसी को कोई चोट लगी हो तो आप फिक्र दिखाने के लिए इस वाक्य का उपयोग कर सकते हैं। इससे आप ये आशा

0: व्यक्त कर सकते हैं कि वो व्यक्ति आराम करके जल्दी ठीक हो जाए।
1: अब इस वाक्य को विभिन्न लोगों की आवाजों में सुनते हैं।
2: ओदाइजिनी,
3: ओदाइजिनी,
4: ओदाइजिनी।
0: और अब एक बार फिर से सुन लेते हैं आज की बातचीत।
5: तामेसान, काओइरो गा वारुई देसु यो। どうしたんですか?
6: 喉が痛いんです。
5: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
6: カイトが今作っています。
7: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
6: お大事に。
5: ハルさんの知恵袋。
1: アッバリヘ、ハマレアンチ。हारू जी की सलाह की, जिसमें आज हम बता रहे हैं कि अगर आप जापान में बीमार हो जाएं तो क्या कर सकते हैं।
0: जापान में बीमार होने पर क्या करना चाहिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी के लक्षण क्या हैं।
1: अगर लक्षण गंभीर ना हो तो आप किसी भी दवाखाने या फार्मेसी से दवाई ले सकते हैं। वहाँ दुकानदार को अपनी परेशानी बताने पर वो आपको सही दवाई दे देगा। तो दवाखाने जाइए और दुकानदार से कहिए पेट में दर्द है या बुखार है। ऐसा करने पर आपको बिना पर्ची के दी जा सकने वाली दवा मिल जाएगी।
0: लेकिन अगर डॉक्टर के पास जाना हो तो आपको किसी चिकित्सालय या अस्पताल जाना होगा। विदेशी पर्यटकों को चिकित्सा देखभाल उपलब्ध करवाने वाले चिकित्सा संस्थानों की सूची जापान राष्ट्रीय पर्यटन संगठन यानी JNTO की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। वेबसाइट तक पहुंचने के लिए आप फॉर सेफ ट्रेवल्स इन जापान JNTO शब्द से सर्च कर सकते हैं। इसे बुकमार्क कर लीजिएगा।
1: इसके अलावा पास के अस्पताल या चिकित्सालय का पता लगाने के लिए आप पर्यटन केंद्र या होटल के रिसेप्शन पर भी पूछ सकते हैं और आपात स्थिति में फोन पर 119 दबाकर एम्बुलेंस बुला सकते हैं।
0: लेकिन हम ये कामना करते हैं कि जापान में यात्रा करते समय आपको कभी भी इन सुविधाओं की जरूरत ना पड़े।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम अपने दोस्तों के साथ साकुरा यानी चेरी के फूल देखने जाएंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये खबरें एनएच के वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। अमरीका और ईरान मफाहमत की याददाश्त के जरिए तय की गई 60 दिन की बातचीत की मुद्दत खत्म होने के बाद भी लड़ाई खत्म करने के मकसद से बहुत दूर हैं। दोनों ममालिक ने जून में मस्कूरा याददाश्त पर दस्तखत किए थे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि ये मुद्दत 18 जून को शुरू हुई, जिसका मतलब ये है कि बातचीत की मुद्दत इतवार को खत्म हो गई। बातचीत के मौजूदात में अमरीका की जानिब से समंदरी नाकाबंदी का खात्मा, आबनाए हरमूज में बहरी जहाजों की आमदोरफ्त बहाल करना, ईरान का जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों का खात्मा शामिल था। दोनों ममालिक ने मुजाकरात के टाइम फ्रेम के दौरान एक दूसरे पर हमले जारी रखे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराकची ने कहा कि दोनों फरीकों के दरमियान कभी जंगबंदी नहीं हुई जिसमें तौसी की जरूरत हो। तेहरान ने आबनाए हुरमोस को दोबारा खोलने के लिए 6 शराइत पेश की हैं, जिनमें ईरान पर पाबंदियां खत्म करना, फौजी कार्रवाइयों से होने वाले नुकसान का मुआवजा और अमरीकी समंदरी नाकाबंदी का खात्मा शामिल है। अमरीका ने 7 जुलाई को ऐलान किया था कि उसने ईरानी तेल की फरोख्त की इजाजत देने वाला लाइसेंस मनसूख कर दिया है और 14 जुलाई को समंदरी नाकाबंदी दोबारा शुरू कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 8 जुलाई को सहाफियों को बताया था कि उनके ख्याल में जंगबंदी खत्म हो गई है। इंडोनेशिया के हुकाम का कहना है कि मुल्क के मशरकी हिस्से में हफ्ते के रोज आने वाले जलजले के नतीजे में 53 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई। फ्लोरेस जजीरे पर मैग्नीच्यूड 7.0 के जलजले से 200 से जायद मकानात को भी नुकसान पहुंचा था। डिजास्टर मैनेजमेंट के एहलकारों ने हलाक होने वालों की तादाद का ऐलान इतवार के रोज किया। हुकाम जलजले के मरकज के करीबी इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों को तेज कर रहे हैं, जहां सड़कें मुनकता हो गई हैं। मकानात को नुकसान पहुंचने के बाद 5,000 से ज्यादा अफराद को नकल मकानी करना पड़ी। खुराक, पानी, कंबल और दीगर इमदादी सामान की फराहमी इंतहाई अहम हो गई है। इंडोनेशिया की हुकूमत का कहना है कि उसने हफ्ते की रात तक मुतअद्दिद इलाकों में 27 टन सामान पहुंचाने के लिए तैयारे भेजे हैं। हुकूमत का मजीद कहना है कि उसने 3,500 से जायद फौजी एहलकार और पुलिस अफसरान को खित्ते में भेज दिया है। एक मकबूल जापानी हफ्त रोजा मांगा मैगजीन की सर्कुलेशन पहली बार 10

0: लाख से नीचे आ गई है। शुए शाह के हफ्त रोजा शोनेन जंप की सर्कुलेशन कभी 65 लाख तक पहुंची थी। जापान मैगजीन पब्लिशर्स एसोसिएशन के जारी करदा आदाद शुमार से जाहिर होता है कि जून तक की 3 माह की मुद्दत में इस जरीदे की औसत प्रिंट सर्कुलेशन 9,85,000 कापियां फी शुमारा रही। ये आदाद शुमार अब भी मकामी जराइद में सबसे बुलंद है, लेकिन 2008 में एसोसिएशन के आदाद शुमार जमा करना शुरू करने के बाद ये पहला मौका है कि हफ्त रोजा शोनेन जंप की अशाद 10 लाख से नीचे चली गई। इसका मतलब है कि जापान में अब कोई तबाती जरीदा ऐसा नहीं है जिसकी सर्कुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो। 1968 में अपने आगाज के बाद से मकबूल मांगा सीरीज हफ्त रोजा शोनेन जंप की मांग में मुसलसल इजाफा हुआ था। इसका अरूज 1994 में 65,30,000 कापियां था, लेकिन दीगर जराइद की तरह हालिया बरसों में इसकी प्रिंट सर्कुलेशन में भी कमी आई है।
1: और सामईन, आखिर में आज की अहम खबरों का खुलासा। टोक्यो के मशिक में वाक़ चीबा प्रीफेक्चर में हुकाम ने कहा है कि रिकॉर्ड शदीद बारिशों के बाद एक और शख्स की हलाकत की तस्दीक हुई है, जिसके बाद हलाक होने वालों की तादाद अब 10 हो गई है। अमरीका और जनूबी कोरिया ने पीर के रोज़ अपनी बाकायदा मुश्तरका फौजी मशकों का आगाज कर दिया है, जिसका मकसद जजीरा नुमा कोरिया में किसी हंगामी सूरतेहाल के लिए तैयारी करना है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुईं।